0: Hablemos de ella. Ae. Elu. Hablemos de él. Manito.
1: हेलो
0: Ae.
1: नामे है क्या?
0: Ae, बोले.
1: आने वाली से लोग बहुत ही मशहूर है शो को एक एक गजलेरा घर पे है जैसे ना उठाओ मजनू सेवा ना घूम का मत देगा ये बुक या किस्सा ले मा 1 2 3 ये को कुरान जाना का वो मौका वो कत्ता की सा आयु कितना तो सका शो ना लोग नंजी है का शो लोग नंजी है लोग कौवा था मशहूर कर बात वाला ना ती इसने ना गोवन को मार
0: Kesa snene danko ema angulela maka mashim shirenhla bathlela bakhotela vese indlela yaleyo ku no ukota ku switisisa ku swi tshame njhani swilo swa koho leswi seketeliwaka na hi bibele indlela yaleyo kesa swinene mavonelo ya n'wina ni ri hi valaka ta ni dlaya SW Scandal.